0: रेडियो उड़ान प्रभ संधु दे नाल प्रोग्राम दे इस हिस्से नु स्पॉन्सर कर रहे ने BDS पेंटिंग, एक वधिया पेंटिंग सर्विस। BDS होम पेंटिंग हाजिर है तुहाडे घर, बेसमेंट ते कमर्शियल यूनिट नु नवा बनाउन लई, नवे रंगा नाल चमकाउन लई। प्रोफेशनल पेंटिंग सर्विसेज, चाहे होवे स्प्रे पेंटिंग, किचन कैबिनेट रीफिनिशिंग, ड्राईवॉल रिपेयर ते स्टको रिमूवल, डेक ते फेंस पेंटिंग, फिनिश्ड बेसमेंट, हार्डवुड ते लैमिनेट फ्लोरिंग। कार, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, हर किस्म दी पेंटिंग विच माहिर। आज ही कॉल करो BDS पेंटिंग दे जुगराज सिंह होना नू 905-965-6311 905-965-6311।
1: सच कहे जे हुंदा
2: चुल्ले ते पकदी रोटी सच है,
3: मिट्टी चुगदी फसल सच है,
2: खुरदी पानी सच है,

सतगुरु होए दयाल दसरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कब हूँ झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणी है। अकाल पुरख ने दिते हुए सारे रंगा नूं माणदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके

0: थोड़ी है तंग तक करूंगी मेरे दोस्त, जिंदगी है मां थोड़ी है।
1: हाय हाय यार, क्या कमाल, बहुत ही मैं कहना की कहते होंगे फ्लॉलेस, भी कोई कमी नहीं इस गीत दे विच, अमेजिंग। सो साडे नाल सदीक साहब जुड़े आ ऑल डेट सॉल्यूशंस तो। कर्जा सिर चढ़ गया, टेंशन ना लो, कर्जा माफ करवाओगे वन एंड ओनली मिस्टर सदीक। सदीक साहब किवें हो?
2: बिल्कुल ठीक नवी, तुसी सुनाओ?
1: बहुत वधिया सर, बहुत वधिया।
2: ग्रेट। सो अगर किसी नु भी किसी किस्म दा कोई कर्जे दा इशू हैगा, चाहे वो बिजनेस दे कर्जे हैगे ने, पर्सनल कर्जे हैगे ने, चाहे वो छोटे कर्जे ने, ये कर्जे ज्यादा, मेरा मैसेज स्पेशली उन लोगों वास्ते हैगा जो मिनिमम पेमेंट कर रहे ने, या एक क्रेडिट कार्ड दा बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड तो पे कर रहे ने, या फिर पेमेंट छोड़ दी है ना, केस कलेक्शन ही चला गया हैगा, इस अपना पैसा इंटरेस्ट जाया ना करो, इस चीज नु इग्नोर ना करो। कई ऑप्शंस अवेलेबल है तुहाडे वास्ते, कॉल कर सकते हो, नंबर है साडा 416-671-0571-0577 ते कॉल करके, चाहे फोन ते इन्फॉर्मेशन ले लो, या मेरे किसी भी लोकेशन ते आके मैं मिल सकते हो। सलाह मशवरे की कोई फीस नहीं हैगी, आओ इन्फॉर्मेशन लो और उसके बाद डिसाइड करो। कर्जा चाहे थोड़े ते क्रेडिट कार्ड का हैगा, लाइन ऑफ क्रेडिट ने, पर्सनल लोन्स ने, पेडे लोन्स ने, या बिजनेस लोन हैगे ने, या इनकम टैक्स का मामला है सीआरए दे नाल पर्सनल, या बिजनेस का जीएसटी आउटस्टैंडिंग है, पेरोल आउटस्टैंडिंग है, पे सब्सिडी आउटस्टैंडिंग है, या कोई कार ट्रक या ट्रेलर फाइनेंस की तसी पेमेंट नहीं कर सके चुके लै गए ने, या पेमेंट नहीं कर सकते वापस करना चाहते हो, या कोई हैसकैप लोन, सिबा लोन लेते सी पे नहीं कर सके, या होर कोई बिजनेस लोन लेते तो समझो पे नहीं कर सकते वापस, तो ये सारे कर्जे थोड़े सैटल हो सकते ने। इस वास्ते कई ऑप्शन अवेलेबल है, सानू कॉल कर सकते हो, नंबर है साढ़ा 416-671-0577-416-671-0577 ते कॉल कर सकते हो। एक चीज की मैं गारंटी कर दा कि एक ते मेरे ऑफिस चो तुहानू ऑनेस्ट एडवाइस मिलेगी, अगर तुहानू जरूरत हुई रिलीफ लैण दी दसंगा रिलीफ लो, अदरवाइज कोई होर ऑप्शन देंगा। दूसरा, अगर तुहाडा केस मैं रिव्यू करने के बाद लवांगा तो इस चीज की मैं गारंटी कर दा कि मेरे ऑफिस चो तुहानू कदे भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। जो वादा करेगा पहली मीटिंग उसके मुताबिक तुहाडा केस अप्रूव होगा, और अगर तुहाडा क्रेडिट खराब होंगे या आली खराब हो चुका तो असं अपने क्लाइंट एनरोल करते हैं क्रेडिट रिबिल्ड प्रोग्राम, क्रेडिट तुहाडा बहुत जल्द बिल्ड हो सकता। नंबर साढ़ा 416-671-0577-416-671-0577 कॉल कर सकते हो। लोकेशन से विजिट करना चाहो तो स्कारबरो दे विच है, मार्क मैनेजमेंट दे कोल, ते कोल दी साडा हेड ऑफिस हैगा किपलिंग रैक्सेल दे कोल, और ब्रैम्पटन विच है ब्रैम्बली बवेड दे कोल। टोल फ्री नंबर हैगा 1-855-671-0577। मेरी डायरेक्ट लाइन हैगी है 416-671-0577 ते कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जी नवी जी,
1: नंबर एक क्विक है 416-671-0577, 416-671-0577। थैंक यू सो मच सर।
2: थैंक यू नवी जी,
1: बहुत शुक्रिया जी। जी गगनदीप, हेलो।
3: हेलो
1: हेलो जी,
3: हेलो भाई जी, की हाल है?
1: ठीक है जी, तुसी सुनाओ?
3: बस वधिया भाई जी, काम तो निकले सी जी।
1: काम तो सारे अज काम तो निकल रहे हैं। अच्छा
3: हां जी, अज बस लॉटरी पा के आए सी जी।
1: लॉटरी पाई है या लॉटरी जीत गए?
3: नहीं जी, जितते होंगे मेरा धरती से पैर ही नहीं लगने।
1: सही गल है यार, नहीं कई बार हम बंदे नु यकीन जहा नहीं ना होंगे। चलो जित जाओगे जे जे जितते हो फिर दस्यो सानू,
3: जे जित गए फिर तुहानू 10% दे देंगे जी।
1: पक्की गल है?
3: हां जी हां जी, लै जी 10 मिली किन्ने दी हुंदी? 649 पाई आ, तुसी देख लो 10% किन्ना हो गया।
1: हाउ मच इज 649 लॉटो? 649 अज है मतलब 14 मिलियन दा जैकपॉट है अज दा।
3: हां जी बस देख लो 10% ला लो जी।
1: चलो 10% ठीक है, मैं तो फिर रिटायर हो जाना।
3: हाँ,
1: जित के
3: करोगे की 10 मिलियन दा? माड़े दो चीजा दसो।
1: हाँ, 10 मिलियन दा यार ज्यादातर चलो इनवेस्ट कर दांगे, ते बाकी ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਯੂਰਪ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ
2: ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ,
1: ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
2: ਸ਼ੌਕੀਨ
1: ਆ, ਬਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਟ ਡੁੱਟ ਹੈ ਮੋੜਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।
2: ਲੈਂਡ ਲੂਨ 2-4 ਏਕੜ
1: ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਫਲੋਰਡਾ ਵਧੀਆ ਐਨ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਹੈਗਾ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਯੂਰਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਯੂਵੀ ਆ ਜਾਂ ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਲਿਨਨ ਆ ਉਹਦਾ ਐਸਯੂਵੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ।
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲਿਨਨ ਤੇ ਯੂਰਸ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ।
1: ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲਓਗੇ?
4: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ
5: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ,
4: ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ,
5: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ,
4: ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ,
5: ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ,
4: ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ,
5: ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ।
6: This is AM 530 CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: ਸਰਦੀ ਚ ਹੀਟ ਨੀ ਚਲਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਚ ਏਸੀ।
1: ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ।
0: ਏਸੀ, ਫਰਨੇਸ, ਗੈਸ ਲਾਈਨ, ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਜਾਂ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਨਵ ਏਅਰ ਕੰਫਰਟ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾਓ ਤੇ ਲਾਈਫ ਚ ਕੰਫਰਟ ਪਾਓ। ਕਾਲ
1: 6477066640 6474640
2: ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
3: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
4: पहुंचो 5503 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
5: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध भी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
3: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
5: 9054599553
3: 9054599

सतगुर होई दयाल त सरदा पूरिए, सतगुर होई दयाल न कब हूँ झूरिए, सतगुर होई दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होई दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़ती कला वाली सवेर दे विच रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां लैके। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्राप्त संधु और मेरे नाल पंजाब की धरती तो निरपक्ष निडर आवाज़ रमेश हशियारपुरी जी जुड़ चुके हैं। सो थोड़ा साड़ा साथ हुण तो लैके 8 बजे तक बने रहना।

0: बहुत ही खूबसूरत सवेर दे विच इक वार फिर स्वागत सारे सुनने वाले स्रोतियां दा पंजाबी लहर नाल जुड़े हुए सब भैणां भरावां नूं बजुर्गां नूं मातावां नूं सत श्री अकाल प्यार दे नाल आदाब नमस्कार उम्मीद करदे हां तुसीं ठीक ठाक होंगे चढ़दी कला दे विच होंगे। सो अज दे प्रोग्राम नूं थोड़े तक हमेशा की तरह साढ़े प्राउड स्पोंसर का बहुत बहुत धन्यवाद। सो अज साढ़े प्रोग्राम के पहले स्पोंसर मल्ली टेंट सर्विस नूं तुसीं याद रखना है। टेंट दीआं सेवावां दे लई आउटडोर ईवेंट करवाना होवे तां मल्ली टेंट सर्विस 647-999-2569 647-999-2569 मल्ली टेंट सर्विसेस। और नाल दी नाल पंजाब दी धरती तो साडी कॉल लग चुकी है जी रमेश हुशियारपुरी जी नाल, उन्हां नाल भी राबता करांगे। सब तो पहला मैं कहूँगा कि जिहड़ा ना मोस्टली आपां अज की वेख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों तो जो सियासत दे विच चल रहा, तो मैं दो गल्लां कहना चाहूँगा कि तकड़ी नाल बेअदबी जुड़ गई, तकड़ी नाल बेअदबी जुड़ गई, पंजे नाल 84 ते कमल दे नाल जुड़े ने दंगे, झाड़ू नाल गलासी। सो ये अज दे हालात आ। सो किसी ना किसी पार्टी दे नाल कुछ ना कुछ जरूर जुड़िया आ। सो 905-673-3337 90567-3333-37 ते गल्लां बातां होणगियां। और रोज़ दी तरह रमेश हुशियारपुरी जी पंजाब तो निडर निरपक्ष आवाज़ मेरे नाल जुड़ चुके ने। स्वागत करदे हां जी पंजाब दीआं तरकालां खूबसूरत कैनेडा दी चढ़दी कला वाली सवेर दी। सत श्री अकाल रमेश जी, की हाल चाल, ठीक ठाक हो जी?
1: ਸਭ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਆ, ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਕੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।

0: 5 locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 6475041557।
2: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई होंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे होंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी

0: जीरो।
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 टू 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 टू 1 रेडियो आवाज।

आज खूबसूरत सवेदा खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्कांच सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी राही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यू जर्सी तक सानू सुन रहे हो आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला, निरभउ निरवैर, मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे। तो एक बार फिर तो उम्मीद दे नाल, एक बार फिर तो कामयाबी दे नाल, तो एक बार फिर तो पॉजिटिविटी दे नाल, चढ़दी कला दे नाल अमनदीप सिंह थोड़ा मुखातब है। पीयरसन एयरपोर्ट का ट्रैक 6 जिथे गाना एयरलाइन का जहाज़ जिथे पहुँच चुका है, साढ़े सामने बिल्कुल लैंड कर चुके हैं। उत्थे जिहड़ा हैगा 41 ईस्ट बाउंड जिहड़ा हैगा मूविंग वैल वैसट लिटल बल स्लो, तो नाल नाल पीयरसन एयरपोर्ट के आस पास डेली रोड से भी पूरा गैगज ट्रैफिक है। तो तुसी अपने कमां नूं निकल पए होंगे, तो तुसी अज दे दिन नूं खूब इंजॉय करोगे, जस्ट इनू

0: आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा वादी उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। तियां दे मेले की जानकारी चलती रहेगी। संडे जून 21 नूं हो रहा, आने वाले संडे नूं हो रहा है, पीएसएन कन्वेंशन सेंटर च हो रहा। जानकारी लई नंबर है 905-799-0999। अगे चल के किरण जी इहदी भी जानकारी देणगे, किहड़े कलाकार आ गए, कित्थे आ गए, राह च उतर गए, किहड़े होटल च, इन्हां दा मीट एंड ग्रीट भी करावांगे, तुहाडा सब कुछ होगा। जस्ट स्टे ट्यून। सब तो पहला छतरी छात्र रिपोर्ट हाजिर है। 5:35 ते सूरज सिंह आया, 9:01 ते चले जाना। मामा चंद सिंह लवारस जाएगा, कोई पता ही नहीं। अज सवेरे सवेरे 8:10 ते आ गया, कहिंदे रात नूं आउंदा हुंदा। मैनूं कहिंदा रात नूं आउंदा, कोई चक्कर नहीं। अज शाम नूं 11:46 ते जाएगा। अज तापमान मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, हल्के जे शावर होणगे। तापमान 22 डिग्री। कल नूं 23 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, झक्खड़ झोले, थंडरस्टॉर्म वगैरह सब कुछ आएगा। फ्राइडे नूं सूरज चमकेगा 24 डिग्री, सैटरडे सूरज चमकेगा 25 डिग्री, संडे सूरज चमकेगा 26 डिग्री, मंडे नूं मीह पैण दे आसार नजर आउंदे ने। साडे नाल गुरप्रीत पुरवा साहब हाजिर ने। सर जी वेलकम टू द शो।
1: धन्नवाद देव जी, तुहानूं ते सारे लिसनर्स नूं गुड आफ्टरनून जी।
0: वेरी गुड मिड आफ्टरनून। महाराज कल क्या हो गया, मासी मासी होई पई है, कमैसी आ।
1: कल तुसीं जिथों मर्जी शुरू कर लो देव जी, कल 3 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑन प्लैनेट अर्थ, जिहड़े फुटबॉल जां सॉकर भी कहिंदे आपां, इत्थे उहनूं खेडदे ने, और तिन्नों एक्शन दे विच सीगे। अज भी दो होणगे, पर कल एम्बापे जिहड़े फ्रांस वास्ते खेडदे ने, उहनां ने जदों एंट्री कीती है ते कल उहनां ने 2 गोल स्कोर कीते ने, ते 3-1 दे नाल फ्रांस सेनेगल तों जेतू रिहा।
0: ठीक है,
1: तां फिर उस तों बाद फ्यूचर सुपरस्टार नॉर्वे नूं रिप्रेजेंट करदे ने अर्लिंग हॉलैंड, जिन्हां ने कि प्रीमियर

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है ते कवरेज इंक्रीज कर दी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500।
3: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets de pal de vich Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services de pal de vich puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna va ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar.
4: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
5: Nobel Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ 2945 ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 20 ਗਲਿੰਗਮ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਟਨ। ਫੋਨ 289-801-0566 ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ।
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888।
6: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: विमला विली जिला विलिच पढ़ दी पीयूच जंट पढ़ दा। विमला विली जिला विलिच, विमला विली जिला विलिच पढ़ दी। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ थोड़ी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015
1: टीम से तो लेके आए ने कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड मेफील रोड ते एक नमी मास्टर प्लान कम्युनिटी जेदे विच 2500 तो भी ज्यादा नमे टाउन हाउसेस सेमी डिटैच ते डिटैच घर तैयार होंगे 2027 एंड 2028 दे विच ट्रेडिशनल टू स्टोरी फ्री होल टाउन हाउसेस बड्डी बैकयार्ड ते अनफिनिश बेसमेंट नाल सिर्फ 7 लाख डॉलर दी रेंज दे विच इन द 700s बहुत जल्द आ रहे ने सेमी डिटैच घर 8 लाख दी रेंज दे विच इन द 800s रिलीजिंग वेरी सून सब तो खास डबल कार गराज वाले बड्डे डिटैच घर सिर्फ 9 लाख डॉलर दी रेंज दे विच इन द 900s रिलीजिंग वेरी सून पब्लिक रिलीज तो पहला बेस्ट लॉट एंड लॉट कॉर्नर लॉट दे लई जल्द तो जल्द संपर्क करो एट 416-302-0016 416-302-0016 416-302-0016 शहर दे विच जगोर रोड एंड मेफील रोड ते 2500 तो भी ज्यादा घर तैयार हो रहे ने 2027 एंड 2028 दे विच कॉल टीम सिद्धू 416-302-0016 416-302-0016 टीम सिद्धू

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस दे ओह सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन, कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਐਪ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਜਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਤੇ। PUNJABILEHRAN ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਐਪ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।